0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के

विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 बजती आपका दोस्त आरजे अंकित आ चुका है कार्यक्रम लेके सुहानी सुबह। जी हाँ दोस्तों, आपकी सुबह को सुहानी बनाने के लिए, आपकी सुबह को सुंदर बनाने के लिए और आपकी सुबह को रोमांचक बनाने के लिए आ गया हूँ। मैं रहूँगा 1 घंटे तक, यानी 8 बजे तक आपके साथ, लगातार सुनाऊँगा कुछ बेहतरीन गीत, लेकिन गीत के साथ साथ दूंगा आपको कुछ करेंट इवेंट्स से जानकारी, साथ ही दूंगा मैं आज का इतिहास की जानकारी और मौसम का हाल भी रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक प्यारे से गीत के साथ आप लोगों के लिए।

फिल्म सत्य पे सत्ता से दोस्तों आप सुन रहे हैं किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाज में ये गीत आर डी बर्मन ने सजाया था संगीत से और गुलशन बावरा के थे बोल। आइए दोस्तों अब आपको दो कुछ जानकारी। तो स्वदेशी विहान चिप पहली सिलिकॉन टेस्टिंग में पास। जी हाँ, भारत के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना के तहत काम कर रही भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अहिसा डिजिटल इनोवेशन ने अपनी स्वदेशी ब्रॉडबैंड चिप विहान की पहली सिलिकॉन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यानी चिप ने पहली कोशिश में ही सही तरीके से काम किया। अहिसा में इस चिप का टेप आउट 26 जनवरी को किया था और 15 अगस्त को इसकी पहली सिलिकॉन टेस्टिंग में सफलता हासिल की। कंपनी का मानना है कि इससे नेटवर्किंग उपकरणों के लिए विदेशी चिप पर भारत पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से 1.43 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। राज्य में रविवार से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत लागू हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को नेताजी इंदौर स्टेडियम में योजना का शुभारंभ किया। साथ ही राज्य प्रशासन ने लाभार्थियों के चयन और आयुष्मान कार्ड पाने की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार के अनुसार निर्धारित मानकों के आधार पर जिन लोगों का नाम आयुष्मान भारत के डेटा बेस में मौजूद है वे संबंधित वेबसाइट से अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी संभावित लाभार्थी का नाम इस डेटा बेस में नहीं मिलता है तो उसके नाम की जांच 2013 के

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने तीन प्रकार के राशन कार्ड के डेटाबेस में एक जाएगी। यदि वहां नाम मिलता है तो यह देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति का ईकेवाईसी पूरा हुआ है या नहीं। ईकेवाईसी पूरा होने के बाद लाभार्थी को कार्ड जारी होने का इंतजार करना होगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित वेबसाइट पर जाकर कार्ड का स्टेटस भी देखा जा सकता है। वहीं ईकेवाईसी नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि सत्यापन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, ऐसे लोगों को ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और दक्षिण पूर्व रेलवे ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रिच में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रेलवे सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के दलों द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। महाप्रबंधक ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की भावना को समर्पित है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी, कुछ करंट इवेंट्स से रिलेटेड न्यूज। अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, और अगले गीत के बाद दोस्तों मैं आपको सीधे लिए चलूंगा आज के इतिहास की तरफ। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना प्यार जंकित के साथ।

फिल्म अभिमान से दोस्तों मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे गीत एस जी। बर्मन ने सजाया था संगीत से, मजरू ने सवारा था बोल से। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे गीत के पहले कहा था कि आपको सीधे लिए चलूंगा आज के इतिहास की तरफ, तो आइए बताता हूं आपको 17 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1717 में फ्रांस, रूस और प्रशिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1743 में स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1787 में यहूदियों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में समूह बनाकर प्रार्थना करने की इजाजत मिली। 1836 में ब्रिटेन की संसद में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए। 1858 में हवाई द्वीप में पहला बैंक खोला गया। 1909 में मदन लाल ढींगरा को वायली और लाल काका की हत्या मामले में पेंटोनिलिया में कैद खाने में फांसी दी गई। 1914 में लुथिवानिया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 1915 में चक्रवर्ती तूफान में गैलवेस्टन और टेक्सास में 275 लोगों की मौत हुई। 1917 में इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1924 में फ्रांस और जर्मनी के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1945 में सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया में नीदरलैंड से अपनी आज़ादी की घोषणा की। और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई। दोस्तों अभी आज के इतिहास के बारे में जानकारी और भी बाकी है, लेकिन वो जानकारी दूंगा मैं आपको अगले ट्रैक के बाद।

फिल्म बॉम्बे टू गोवा से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे। ये ट्रैक कंपोजिशन आर डी बर्मन की और लिरिसिस्ट थे राजेंद्र कृष्ण। आई दोस्तों, अब बाकी के आज के इतिहास के बारे में जानकारी और दे दूं आपको। 1959 में सोवियत संघ और इराक में परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1982 में जर्मनी में पहली सीढ़ी कॉम्पैक्ट डिस्क लोगो को लिए उपलब्ध की गई थी। 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक और अमेरिका के राजदूत ऑर्नल्ड डे राफेल को एक हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी। 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने वाशिंगटन में पेटेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपने अनैतिक आचरण के लिए प्रथम बार ग्रैंड जूरी के समक्ष उपस्थित हुए थे। 2000 में फिजी में भारतीय मूल के लोगों की बर्बादी रोकने के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी ने भारत से मदद मांगी। ब्रिटेन द्वारा मानव भ्रूण कोशिकाओं की क्लोनिंग को अनुमति दी। 2002 में रूस ने दलाई लामा को अपने देश में दौरे के लिए वीजा देने से इनकार किया। 2004 में उदारवादी राजनीतिक लियोनल फर्नांडिस ने डोमिनिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 2005 में पूरा बांग्लादेश बम धमाकों से दहला। 63 जिलों में लगभग 400 विस्फोट हुए थे। 2007 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की बेटी की सगाई रिपब्लिकन सांसद जॉन हैंगर के बेटे के साथ हुई। 2008 में झामुमो ने 23 माह पुरानी मधुकोड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया। 2008 में अमेरिका के महान तैराक एक ओलंपिक खेल के दौरान 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। और 2009 में आंतरिक सुरक्षा के मामले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आज के इतिहास तो आपको मैं बता चुका हूं, अब बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ। और अगले गीत के बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं खेल से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना प्यार जंकित के साथ।

फिल्म चलते चलते से दोस्तों शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत बप्पी लहरी का संगीत अमित खन्ना के थे बोल। आइए दोस्तों आपको मैंने कहा था कि खेल से जुड़ी कुछ जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करता हूं। विश्व कप में दमदार शुरुआत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को ड्रॉ पर रोका। भारतीय महिला हॉकी टीम ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए FIH विश्व कप में रविवार को पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को पूल डी के सबसे कठिन मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ पर रोका। अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पूल डी में भारत के लिए सबसे कठिन चुनौती माने जा रहे मुकाबले में भारत ने शुरुआती क्वार्टर में ही दबदबा बना लिया था और चीन को खुलकर खेलने दिया ही नहीं। हाफ टाइम तक उसके पास 2-1 से बढ़त थी। आखिरी क्वार्टर में अगर भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। पूरे मैच में शानदार फॉर्म में रही नवनीत कौर सर्कल में गेंद लेकर घुसने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चीन ने उनके प्रयास को नाकाम कर दिया। मैच के बाद भारतीय कोच शॉर्ट मारिन ने भारत को पेनल्टी कॉर्नर नहीं दी जाने पर नाराजगी भी जताई। भारत के लिए नवनीत कौर 8वां मिनट और दीपिका 26वां मिनट ने गोल दागे, जबकि चीन के लिए 14वें मिनट में झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक पर और 39वें मिनट में मा निंग ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। भारत का अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। रन की साहसिक पारी खेलकर भारत के देवदूत बने पर्टिकल। देवदूत पर्टिकल ने 167 रन की शानदार पारी भारत के बूते। भारत ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के बारिश से प्रभावित दूसरे दिन रविवार को श्रीलंका के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए। रविवार को सिर्फ 43 ओवर का खेल संभव हुआ और इस दौरान श्रीलंका के स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। स्टंप्स के समय कुलदीप यादव 12 और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। लगातार बारिश और मैदान गीला होने के कारण दिन का खेल दोपहर 2:35 शुरू हो सका। लंबे अंतराल के बाद उतरे श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पहले दिन की तुलना में बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल कर दिया। शनिवार के 131 रन से आगे खेलने उतरे पेडिकल ने तेज गेंदबाज असीता फर्नांडो की गेंद पर चौका लगाकर 215 गेंदों में अपना पहला 150 रन पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि पर पहुंचने से पहले ही भारत के ऋषभ पंत के रूप में बड़ा झटका लग चुका था। तो दोस्तों खेल से जुड़ी भी खबरें हो चुकी है। अब दोस्तों अगले गीत के बाद मैं आपको बताऊंगा आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, और उसके पहले आपको बता दो कि अभी घड़ी में बज चुके हैं 7:32। आपका दोस्त है आरजे अंकित आपके इस कार्यक्रम में यानी सुहानी सुबह में, और आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर। सिर्फ रेडियो सेट्स पे ही नहीं दोस्तों, अपने फ़ोन पर भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। सिर्फ डाउनलोड करना होगा न्यूज़ ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप, वहाँ ट्यून करिए FM गोल्ड और इन्जॉय करिए हमारा कार्यक्रम। रहूँगा 8 बजे तक आपके साथ, सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ बेहतरीन ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक्स।

फिल्म जूली से दोस्तों आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। ये गीत राजेश रोशन का संगीत आनंद बख्शी के थे बोल। हाय दोस्तों, आपको बताता हूँ 17 अगस्त को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1961 में अनामिका हिंदी भाषा की जानी मानी कवियत्री हैं, उनका जन्म हुआ था। 1916 में अमृतलाल नागर साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त किए थे, उनका हुआ था जन्म। 1941 में वाई वी रेड्डी भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर थे, उनका हुआ था जन्म। 1941 में दोस्तों बीमल जालान भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर थे, उनका भी जन्म हुआ था। और 1932 में वी एस नायपाल भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था। अगले गीत की बात दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 17 अगस्त को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पे आरजे अंकित के साथ।

फिल्म शान से उषा उत्थुप लेकर आई थी ये गीत आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के थे बोल। आइए आपको बताता हूँ अब 17 अगस्त को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो 2020 में पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक थे, उनका निधन हुआ था। 2020 में निशिकांत कामत, हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक

और अभिनेता थे, उनका भी निधन हुआ था। 2007 में दशरथ मांझी एक ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें बिहार का माउंटेन मैन कहा जाता था। उनका निधन हुआ था 1958 में। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उनका निधन हुआ था। 1949 में पुलिन बिहारी दास महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी थे, उनका भी निधन हुआ था। 1909 में मदनलाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, उनका निधन हुआ था। और 1982 में फादर कामिल बुल के प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका जन्म बेल्जियम की फ्लैंडर स्टेट के रम्स्क पहले गांव में हुआ था, उनका भी हुआ था निधन। दोस्तों अगले गीत के बाद मैं आपको बताने वाला हूं 17 अगस्त को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में, तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पे आपके दोस्त अर्जन अंकित के साथ।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म नया दौर से। शहीर ने सजाया था संगीत से और शहीर नहीं सवारा था बोल से। दोस्तों आज इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस है।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे?
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हरी चलूं
0: सबकी यारी मेरा।
2: फिल्म काला पानी से दोस्तों आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, एस जे बर्मन का संगीत, मजरूह के बोल। दोस्तों देखते ही देखते पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर और अब आपको बताने वाला हूं मैं मौसम का हाल। तो पहले बता देता हूं आपको पिछले 24 घंटों के बारे में। तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 1.9 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री कम था। अधिकतम अपेक्षित आर्द्रता थी 97% और न्यूनतम अपेक्षित आर्द्रता थी यानी मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी 83%। वर्षा हुई थी 15.1 मिलीमीटर। आने वाले 24 घंटों में दोस्तों बादल छाए रहने की संभावना

ना है, गर्जन तर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। और मछुआरों के लिए भी दोस्तों चेतावनी है, और वो ये है कि 17 तारीख से यानी आज से और 18 तारीख तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों के उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कभी कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके आने की प्रबल संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 तारीख से 18 तारीख तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में ना जाए। और दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के एक आखिरी गीत की तरफ, और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत, लेकिन थोड़ी देर के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलने वाला हूँ एफएम गोल्ड पर 11:10 पर। तो बस बने रहिए 100.1 एफएम गोल्ड पर, और अगला कार्यक्रम होगा इस आखिरी गीत के बाद आप लोगों के लिए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम गोल्ड पर।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम

0: इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका

0: और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान के पांचवें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले

0: बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 टू बिगिन टुडे इन लद्दाख एंड आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
3: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demography composition, education, economic activity, migration, disability, language, fatality and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
2: The National Testing Agency NTA has announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. NTA said the English paper will be held on 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in shift 2. The Sociology paper will be held on 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 exam.

0: শ্রীকান্ত আচার্যর গান আমরা শুনছিলাম, আর গান শুনতে শুনতে সময় হয়েছে একটা সংবাদ বিরতির। একটু চারিদিকের খবরাখবর শুনে তারপর আবার আমরা গন্ধ নিয়ে ফিরে আসব। গোপাল রইলাম আজ আপনার সঙ্গে মনের মেলোডিতে। একটু খবর শুনি, শুনে তারপর ফিরে আসি। সঙ্গে থাকুন আর শুনতে থাকুন 100.1 FM গোল্ড।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। PM गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तंत्र के माध्यम से किया गया है। उधर झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र

सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला सदर अस्पताल में जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ थाने के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत में फैल गई। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे। नेपाली सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल सेठ को आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उन्हें नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 3 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान सेना प्रमुख कल शिवपुरी में सेना कमान के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और प्रशिक्षकों तथा विदेशी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे आपसी हित के मुद्दों पर नेपाल के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जनरल धीरज सेठ बुधवार को पोखरा में पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होंगे। वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वे बुधवार को स्वदेश लौट आएंगे। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास।
1: कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक ठोस चर्चा, सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के अंतर्गत वरीयता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। वरीयता के इन क्षेत्रों में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा लचीलापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा अनुकूलन शामिल है।
0: विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित हो रही हैं। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में क्षमता से अधिक 153 यात्री सवार थे। पिछले सप्ताह मंगलवार को तेज लहरों के कारण नौका पलट गई। पुलिस ने बताया है कि शवों की बरामदगी के बाद मृतकों की संख्या पिछले दिन के 72 से बढ़कर 84 हो गई है। जिम्बाब्वे की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 77 लोगों को बचा लिया गया है। नौका में 90 लोगों को ले जाने की अनुमति थी। करीबा झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण

1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शक्तिशाली जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। ये 200 किलोमीटर से अधिक लंबी है और कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर तक चौड़ी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन प्रमुख पीट हेक्सेथ को दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भारी कटौती करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये अभ्यास बहुत खर्चीले हैं और उत्तर कोरिया को शत्रुतापूर्ण और अनुचित संदेश देते हैं। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज से शुरू होने वाले 11 दिन के उलुची फ्रीडम शील्ड अभ्यास को पूरी तरह रद्द करना अब संभव नहीं है। श्री ट्रंप के निर्देश के बावजूद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नियमित ग्रीष्मकालीन अभ्यास योजना के अनुसार ही होंगे और इसमें दक्षिण कोरिया के 18,000 सैनिक भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण को उत्तर कोरिया अक्सर युद्ध का पूर्वाभ्यास बताकर इसकी निंदा करता है। यह अभ्यास ड्रोन हमलों से निपटने, साइबर हमलों को रोकने और GPS व्यवधान से निपटने जैसे आधुनिक सुरक्षा खतरों पर केंद्रित है। इसराइल और होंडुरास ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। होंडुरास के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल की इसराइल यात्रा के दौरान इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स और होंडुरास के रक्षा मंत्री एनरिक रोड्रिक्स बुकार्ड ने कल इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। होंडुरास के इस शिष्टमंडल में देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री और होंडुरास सेना के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने संयुक्त रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों तथा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिरा है। इसराइल रक्षा बलों IDF ने एक बयान में कहा है कि अबू हसन अला दीर अल जहरानी पर हुए हमले में मारा गया। ये कार्रवाई सीमा पर हुए ड्रोन हमले में इसराइली सैनिकों के घायल होने के जवाब में की गई है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस हमले में 4 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। IDF ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में रात भर चले हमलों के दौरान हिजबुल्ला के विशिष्ट रदवान बल के कमांडर अली समीर अल हज हसन को मार गिराया। दक्षिणी गांव अंसार पर इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए, जो 2024 में युद्ध विराम होने के बाद से इसराइल के सबसे घातक हमलों में से एक है। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है, जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फलस्तीनी इलाके से पीछे हटना है। पिछले साल मिस्र में कुशनर और स्टीव विटकॉफ तथा हमास नेताओं के बीच हुई बैठक में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन हमास के हथियार छोड़ने के मुद्दे पर प्रगति नहीं हो पाई है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के साथ होगा। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हरा कर मजबूत शुरुआत की थी। वेल्स के खिलाफ भारत के 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही आए थे। संजय के पहले गोल के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जिससे भारत को 3 महत्वपूर्ण अंक मिले। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा, वहीं महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू खुई से होगा।

भारत और इंग्लैंड के बीच गॉल स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी 462 रन पर सिमट गई। देवदत्त पाडिकल ने 167 और केएल राहुल ने 82 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में एक विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित राज्य में अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अशोक धाम स्टेशन से मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजली का एक खंभा गिरने से करंट आने की अफवाह के कारण अफरा तफरी मची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर मेहमान सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के

गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। आपका दोस्त आरजे अंकित आपके साथ और सुबह के वक्त चुके हैं 11:10। दोस्तों, कभी कभी किसी कलाकार को याद करने के लिए उसकी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कोई धुन बजती है, कोई पुराना गीत कानों में पड़ता है और अचानक वो चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। आज का ये कार्यक्रम ऐसे एक याद के नाम है, एक ऐसा अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा के हीरो को सिर्फ रोमांटिक नहीं बनाया, उसे बिंदास बनाया, मस्तमौला बनाया, शरारती बनाया और सबसे बढ़कर उसे जीना सिखाया। जी हाँ, आज की महफिल सजेगी शम्मी कपूर के नाम। उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था कि पर्दे पर आते ही लगता था अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास कार्यक्रम, लो आ गई उनकी याद, और शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसमें शम्मी कपूर का वो शुरुआती रोमांटिक अंदाज नजर आता है।

फिल्म दिल दे के देखो से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे एक गीत, उषा खन्ना का संगीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल। शम्मी कपूर के करियर के शुरुआत दौर में ही उनका एक अलग पहचान बनने लगी थी। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर शरारत थी और आंखों में एक ऐसा जादू जिसे कैमरा खुद ब खुद पकड़ लेता था। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े यूथ आइकन्स में शामिल होने वाले थे। और फिर आया वो दौर जब शम्मी कपूर ने अपनी स्क्रीन पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल दिया। सिर्फ सूट पहनकर रोमांस करने वाला हीरो नहीं, अब हीरो पहाड़ों पर दौड़ रहा था, नाच रहा था, गा रहा था और अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगला गीत उसी बेफिक्र शम्मी कपूर की याद दिलाता है।

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: फिल्म जंगली से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत शंकर जय किशन का, कंपोजिशन लिरिसिस्ट शैलेंद्र। ये गीत आया और जैसे शम्मी कपूर की

जुनून था। लेकिन दोस्तों, शम्मी कपूर सिर्फ याहू वाले हीरो नहीं थे, उनके अंदर एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक साइड भी था। वो प्यार को कभी शरारत से कहते थे, कभी आंखों से, और कभी सिर्फ एक मुस्कान से। अब अगला गीत सुनिए और महसूस कीजिए शम्मी कपूर के उस रोमांटिक अंदाज को।

फिल्म तीसरी मंजिल से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के थे बोल। क्या खूब मेल था, शम्मी कपूर का अंदाज, मोहम्मद रफी साहब की आवाज और आर डी बर्मन का संगीत। ये गीत बताता है कि शम्मी कपूर जितने एनर्जेटिक थे उतने ही प्रभावशाली रोमांटिक एक्टर भी थे। अब जरा माहौल में थोड़ा सा कश्मीर की ठंडी हवा का एहसास लाते हैं, क्योंकि शम्मी कपूर और खूबसूरत लोकेशन का रिश्ता भी कुछ कमाल का था। उनकी फिल्मों में पहाड़, बर्फ, झीलें और खुला आसमान और उनके साथ मोहब्बत। तो अगला गीत उसी खूबसूरत दुनिया से।

0: फिल्म कश्मीर की कली से दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, ओपी नैयर का संगीत और एस एच बिहारी के बोल। दोस्तों चीटों की घड़ियां बज चुके हैं 11:32। आपका दोस्त आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है लो आ गई उनकी याद आपके अपने चैनल पर यानी 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। और दोस्तों आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं शम्मी कपूर पर, रहूंगा मैं आपके साथ 12 बजे तक, सुना रहा हूँ बैक टू बैक शम्मी कपूर के फिल्मों से बेहतरीन गाने। और आप हमारे कार्यक्रम सिर्फ 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर ही नहीं आप सुन सकते हैं, अपने फोन पर भी डाउनलोड करिए न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप, ट्यून करिए एफएम गोल्ड और एंजॉय करिए हमारा कार्यक्रम।
1: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात, आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 एफएम गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
0: शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी और ऊपर से रफी साहब की आवाज, ये गीत सुनते ही लगता है जैसे मोहब्बत को किसी खूबसूरत वादे की जरूरत ही नहीं, बस सामने वाला खूबसूरत हो और दिल में प्यार हो। दोस्तों शम्मी कपूर की खासियत ये थी कि वो हर गीत को सिर्फ गाते हुए नजर नहीं आते थे, वो उसे जीते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन और उनका डांस, हर चीज गीत को एक कहानी बना देती थी। और अब एक ऐसा गीत जिसमें उनका वही चांद पूरे रंग में दिखाई देता है।

फिल्म प्रिंस। दोस्तों मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक, शंकर जयकिशन का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी। अगर स्टाइल की बात हो और शम्मी कपूर का नाम ना आए तो बात अधूरी है। इस गीत में उनका अंदाज बताता है कि उस दौर में फैशन के लिए किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की जरूरत नहीं थी, शम्मी कपूर खुद एक ट्रेंड थे। और अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान भीड़ में होते हुए भी किसी एक शख्स को ढूंढता है, आंखें किसी का इंतजार करती है और दिल कहता है शायद वो अभी सामने से आ जाए। इसी एहसास के साथ अगला गीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, यह गीत संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने, बोल से सवारा था हसरत जयपुरी ने। पेरिस की खूबसूरत लोकेशन, शम्मी कपूर का चार्मिंग अंदाज और रोमांस से भरा हुआ यह गीत, उनकी फिल्मों की यही खूबी थी। कहानी चाहे जहां ले जाए, शम्मी कपूर की मौजूदगी माहौल को हमेशा हल्का और खूबसूरत बना देती थी। अब बात करते हैं उस शम्मी कपूर की जो सिर्फ प्रेमी नहीं था, वो दोस्त भी था, शरारती भी था और जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करने वाला इंसान भी। उनके गीतों में एक ऐसी पॉजिटिविटी थी जो आज भी सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है।

फिल्म ब्लफ मास्टर से दोस्तों मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीत राजेंद्र कृष्ण के बोल। दोस्तों ये गीत शम्मी कपूर की एनर्जी का एक और शानदार उदाहरण है। उन्हें देखकर लगता है कि उम्र चाहे जो भी हो, दिल में अगर जवानी बची हुई है तो जिंदगी हमेशा रंगीन रह सकती है। और दोस्तों अब एक ऐसा गीत जिसमें शम्मी कपूर का रोमांटिक अंदाज थोड़ा और मैच्योर नजर आता है। उनकी फिल्मों की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हर दौर में उन्होंने अपने अंदाज को बदला लेकिन अपना चार्म कभी नहीं खोया।

फिल्म ब्रह्मचारी से दोस्तों मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल। दोस्तों बढ़ेंगे कार्यक्रम के एक आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा मोहम्मद रफी की आवाज़ में और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाज़त। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं थोड़ी दिनों में, ये वादा है, ये प्रॉमिस है आप लोगों से। तब तक लिए बाय, टेक केयर, इंजॉय करिए, सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड हरा सुन। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप लोग लिए।

0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: ডুরান্ড কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে খেলবে। সল্টলেকের জো ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে খেলা শুরু হবে বিকেল চারটে। মোহনবাগান গ্রুপ পর্বে সবকটি ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে। অন্যদিকে জামশেদপুর এফসি গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে শেষ আটে পৌঁছেছে। গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনে প্রথম ইনিংসে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা 5 উইকেটে 99 রান করেছে। এখনও পর্যন্ত 363 রানে পিছিয়ে আছে তারা। দিনুলা 14 ও নুয়ান ডিকওয়ালা 8 রানে অপরাজিত রয়েছেন। ভারতের মানব সুথার 2টি ও মোহাম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব ও রবীন্দ্র জাদেজা 1টি করে উইকেট নেন। এর আগে ভারত প্রথম ইনিংসে 462 রান করে। দেবদত্ত পারিকাল 167 রান করেছেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সংস্কার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সরকার খুব শীঘ্রই একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গণেশ কুমার আজ পাটনায় নির্বাচন বিষয়ে সচেতনতার জন্য ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। নতুন দিল্লিতে আগামীকাল ব্রিক্স দেশগুলির পরিবেশ মন্ত্রীদের বৈঠক বসছে। ডুরান্ড কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে খেলবে। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর শুনুন বেলা 1:30।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी NEC के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

0: against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun Hariharan Amsakarunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसकरुन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
3: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newson

0: www.awr.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
1: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
2: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
1: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
4: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा

ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और

मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार की समीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भावी कार्यदिशा पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मानवता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित है। बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीसराय भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने पर भारी भीड़ होने से मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक दिन नागपंचमी पर कपाट खुलते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने को कहा। प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने प्राधिकरण से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। तमिलनाडु की याचिका पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ग्रस्त 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के पीड़ित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। गुवाहाटी में श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 15,000 रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया

0: गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसी लाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष हैं। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार की समीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भावी कार्य दिशा पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित सहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और गोपनीय संचालन व्यवस्था, सुरक्षित कक्षों, एयर गैप्ड सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित है। बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित थी। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीसराय भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने पर भारी भीड़ होने से मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक दिन नागपंचमी पर कपाट खुलते हैं और इस दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन आज मेजबान श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 243 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। MR अर्जुन और हरिहरन हमसा करुणन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु आज महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति के सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी।

0: उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में रामगढ़ वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह अभियान संदिग्ध गतिविधियों के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9BC गार्डियन विमान 30 महीने की लीज पर लिए जाएंगे। ये विमान अत्यधिक ऊंचाई पर लंबी अवधि तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इनका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसार तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारण का अभी पता चल नहीं पाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तूतू खालिनी रोड के पास एक टैंकर और कार की टक्कर में हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ जारी है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका अभी भारत से 178 रन पीछे है। हॉकी विश्वकप में भारतीय पुरुष टीम आज अपने दूसरे पूल डी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली में शुरू हो गई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकर्णन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav,

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

5:21 है। स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसे आप सुनते हैं हर रोज शाम इसी जगह इसी चैनल पर। कार्यक्रम का नाम है चैन क्लासिक्स और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है उसके माध्यम से भी आप हमारे इस प्रसारण को सुन पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला गीत जिसे आपने सुना ये रात फिर ना आएगी फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को गायक कलाकार आशा भोसले की आवाज़ में। SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर के द्वारा संगीत दिया गया था इस गीत में। और वाकई में यही तो वो जगह है, यही तो वो जगह है जिसके माध्यम से मैं और आप मिले थे। जी हाँ, मेरी और आपकी पहली बात इसी जगह से हुई थी, है ना। और ये जो संगम है मेरा और आप सभी सुनने वालों का, खैर आज तो मैं हूँ लेकिन श्रोताओं के साथ रेडियो का जो कनेक्शन है वो आज का तो नहीं है, है ना, बल्कि सदियों से चला आ रहा है ये रिश्ता और आगे भी यूं ही चलता रहेगा, यही रिश्ता यूं ही कायम रहेगा। और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के साथ हमारी बात होती है। जी हाँ, दिल से दिल का कनेक्शन है और यूं ही अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कई सारी बातें हम करते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं हम और बातचीत होती है। साथ ही साथ एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला भी चलता रहता है अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। और दिल से दिल का कनेक्शन है तो कई बार ऐसा होता है कि गाने भी, पसंदीदा गाने भी हमारे और आपके कई बार मिल ही जाते हैं। और चलिए ये जो रिश्ता है मेरा बल्कि रेडियो का और आप सभी श्रोताओं का यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन फिलहाल चैन क्लासिक्स के संग मैं और आप जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत। और चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल किशोर कुमार और अनिति की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए। और इसके बाद एक से बढ़कर एक गीत और भी हैं जो कि पहुंचाए जाएंगे आप सभी श्रोताओं तक। कार्यक्रम चल रहा है चैन क्लासिक, शाम का वक्त है और साथ ही साथ भीनी भीनी शाम है। जी हाँ, एक तो शाम का समय है उसके साथ चाय, बिना चाय के शाम जो है वो सुहानी नहीं होती, और ख़ासकर जब भीनी भीनी शाम हो, जी हाँ बरसात का मौसम हो, तब चाय के साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि चाय को और ज़्यादा रंगीन कर देती हैं। तो चलिए आप शाम को अपनी चाय की प्याली के साथ रंगीन करते रहिए, साथ ही साथ इस कार्यक्रम का साथ भी बना रहेगा आप सभी श्रोताओं के साथ। और फिलहाल किशोर कुमार अनिति की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

आरडी बर्मन के संगीत से सजाइए गीत आप सुन रहे थे, जिसमें बोल थे गुलशन बावरा के सत्तिक पे। सत्ता फिल्म से सुना आपने ये गीत, गायक कलाकार किशोर कुमार और अनिति की आवाज में।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: पांच बजकर 30 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल परियोजना प्रस्तुति में फिर एक बार आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं दोबारा लेकर एक नई योजना और आज बात करेंगे दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में। दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना गोवा सरकार द्वारा 30 मई 2016 को शुरू की गई एक राज्य प्रायोजित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गोवा के दीर्घकालिक निवासियों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। मुख्य विशेषताओं और लाभ की अगर बात की जाए तो परिवार के आकार के आधार पर बीमा कवरेज मिलता है। सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के दौरान नकद पैसे देने की जरूरत नहीं होती। गंभीर बीमारियों और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित पैकेज के तहत वित्तीय सहायता मिलती है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जीवन शैली से जुड़ी पुरानी बीमारियों के लिए हर साल खर्च कवरेज भी दिया जाता है। पात्रता की अगर बात करें तो आवेदक कम से कम 5 वर्षों से गोवा का निवासी होना चाहिए। ये योजना गोवा के सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और केंद्रीय कर्मचारियों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी नागरिकों के लिए खुली है। आवश्यक दस्तावेज के तौर पर निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की जरूरत होती है।
0: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: हंड्रेड पॉइंट वन FM गोल्ड परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक। बात कर रहे थे दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा बात होगी, लेकर आएंगे एक नई योजना। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा और रुख करते हैं कार्यक्रम चैन क्लासिक्स की ओर, जिसे आप सुन रहे हैं चैनल 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक से बढ़कर एक कुछ पुराने फिल्मी गीत, तो रुख करते हैं अगले गीत की ओर। और इस वक्त समय हो चला है 5:33।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

जी हाँ, सावन का महीना आते ही दिल में एक अलग सी खुशी महसूस होने लगती है। और ये खुशी कब बढ़ती है पता है आपको? ये खुशी तब बढ़ने लग जाती है जब इस तरह के गीत संगीत हम सुनते और सुनवाते हैं। और लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में फ़िलहाल आप सुन रहे थे मिलन फिल्म से इस गीत को, जिसमें आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में ये जो गीत है, इस गीत को सुनते ही ना सावन की ये जो खुशी है, जो आनंद है, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरह के अनगिनत गीत हैं जिसे बॉलीवुड में बनाया गया। एक और गीत मैं आपको सुनवाती हूँ जिसमें सावन से जुड़ा हुआ ही एक गीत है। और चलिए, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में इस तरह के गीतों को तो सुनना बनता है ना। तो आवाज़ है लता मंगेशकर की, सुनवाऊँ आपको ये गीत। सुन रहे हैं कार्यक्रम चायन क्लासिक्स।

पांच बजकर 45 मिनट हो चुके हैं। स्टूडियो घड़ी में संगे आप शर्मिशा के और सुन रहे हैं कार्यक्रम चायन क्लासिक्स। और फिलहाल गबन फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, गायक कलाकार लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसमें बोल थे शैलेंद्र की और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और तराना आप तक पहुंचाएं, उससे पहले अलीपुर मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है सतर्क वार्ता आने वाले समय के लिए, यानी कि कल 18 अगस्त के लिए सतर्क वार्ता दी जा रही है, जिसे साझा करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से और बताऊं आपको कि मौसम विभाग की ओर से क्या बताया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि 18 अगस्त को सुबह 8:30 से दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना दी जा रही है। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और एक या फिर दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की प्रबल संभावना भी दी जा रही है। इसके अलावा दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना भी दी जा रही है। दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना भी दी जा रही है। तो ये तो थी सतर्क वार्ता कल यानी कि 18 अगस्त के लिए। फिलहाल रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है चायन क्लासिक्स, जिसमें आप सुनते हैं एक से बढ़कर एक पुराने फिल्मी गीत। और फिलहाल आशा भोंसले आप सभी सुनने वालों के लिए।

हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला

राजेश रोशन के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें बोल थे आशा भोंसले और अमित कुमार की। बातों बातों फिल्म से सुना आपने ये गीत बोल योगेश के थे। अगले कार्यक्रम माफ़ कीजिएगा, अगले गीत की ओर आगे बढ़े। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि आपसे बस थोड़ी ही देर में यानी कि ठीक 6 बजे मैं और आप जुड़ जाएंगे समाचार की दुनिया के साथ, और मेरी और आपकी बात दोबारा होगी इसी जगह इसी चैनल पर। समय रहेगा 6:20। फिर से इसी कार्यक्रम को लेकर लौटूंगी आप सभी श्रोताओं के बीच। तब तक के लिए आप सुनते रहिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म बॉबी से इस गीत को।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने

0: वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme or ECMS with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacturing of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of National Office

0: bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents, including Vasundhara Raje Sindhia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Bejayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal, and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the national treasurer of the party. B.L. Santosh has been appointed as organizational national general secretary. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as national general secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani, and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas, including Dr. Hemang Joshi as Yuva Morcha President, Roop Kumari Chaudhary as Mahila Morcha President, and Bansilal Gurjar as Kisan Morcha President. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has congratulated the newly appointed national office bearers of the party and those who have been given various responsibilities. Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency, NTA, and other senior officials in New Delhi. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. The Qatar India Remittance Service based on post transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. The initiative combines the extensive reach of postal networks with India's digital public infrastructure to provide an efficient and convenient channel for cross-border remittances. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at stumps on day 3 of the first test in Galle. Manav Suthar led the wickets column for India with 4 scalps, while Ravindra Jadeja picked up 3. Jadeja became only the 4th player in test cricket history to reach the milestone of 350 wickets and 4,000 runs. He's also the first Indian left-arm bowler to achieve the haul. In badminton, Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have won their first round clash against Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain at BWF World Championships 2026 in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है मैं हूं जया भारती श्रोताओं विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है विकसित भारत की मजबूत नींव तभी तैयार होगी जब देश की महिलाएं स्वस्थ शिक्षित सुरक्षित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार हों सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया है मातृ स्वास्थ्य से लेकर टीकाकरण डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पोषण बालिकाओं के स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन तक कई योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को सीधे प्रभावित किया है आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है और किस तरह आर्थिक सशक्तिकरण स्थानीय शासन संसद और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है श्रोताओं महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी है मातृ स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ पोषण टीकाकरण और कैंसर की जांच जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न पहलों से महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है आइए रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है
3: महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से होती है स्वस्थ महिला न केवल अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी अधिक प्रभावी भूमिका

0: निभाती है। इसी सोच के साथ सरकार ने मातृ स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 12 अगस्त 2026 तक इस मिशन के तहत 110 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े जा चुके हैं। वहीं अब तक आभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.72% है। इसका अर्थ है कि महिलाएं भी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से जुड़ रही हैं और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। और अब बात पोषण और शुरुआती बाल विकास की। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन का उद्देश्य कुपोषण से निपटना और बच्चों के शुरुआती विकास को बेहतर बनाना है। इसके तहत पोषण और आंगनवाड़ी से जुड़ी विभिन्न पहलों को एकीकृत व्यवस्था के रूप में लागू किया जा रहा है। 31 जुलाई 2026 तक इस मिशन के तहत 8.94 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं दी जा रही थी। इनमें 64,46,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं, 45,44,000 से अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं और 15,68,000 से अधिक किशोरियां शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में 1,29,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है। वहीं 31 जुलाई 2026 तक लगभग 13,31,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पदों पर कार्यरत थे। श्रोताओं, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में टीकाकरण भी बेहद आवश्यक है। मिशन इंद्रधनुष और डिजिटल प्लेटफॉर्म यू विन के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को बेहतर तरीके से दर्ज और ट्रैक किया जा रहा है। 18 मार्च 2026 तक यू विन पोर्टल पर 11.87 करोड़ बच्चों और 3.96 करोड़ गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका था। इसी अवधि तक 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जा चुके थे। महिलाओं के निवारक स्वास्थ्य की दिशा में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 17 फरवरी 2026 तक देश भर में 8.73 करोड़ महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी थी। बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 28 फरवरी 2026 को देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1.20 करोड़ पात्र 14 वर्ष की बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। 15 जुलाई 2026 तक देश भर में 52,10,302 बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जा चुका था। यानी मातृ स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और कैंसर की समय समय पर जांच, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता भी महिला सशक्तिकरण का अहम हिस्सा है। वित्तीय समावेशन से लेकर पंचायती राज, संसद और रक्षा क्षेत्र तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आइए सुनते हैं एक और रिपोर्ट और जानते हैं कि किस तरह नारी शक्ति विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन रही है।
2: स्वस्थ और शिक्षित महिला के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही परिवार और समाज में अपने फैसले खुद लेने में अधिक सक्षम होती है। इसलिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को भी विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहलों के माध्यम से बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य केवल उनकी व्यक्तिगत आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें परिवार और समाज के आर्थिक फैसलों में अधिक सक्षम बनाना भी है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र में भी साफ दिखाई देती है। 8 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 96.88 करोड़ मतदाताओं में 47.15 करोड़ से अधिक महिलाएं थी। ये आंकड़ा बताता है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कितनी व्यापक हो चुकी है। स्थानीय शासन में भी महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। 19 मार्च 2025 तक देश में 14,50,000 महिलाएं निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी। ये कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। यानी गांवों और स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े फैसलों में महिलाएं अब बड़ी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी 106वें संविधान संशोधन अधिनियम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33

0: 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात लागू होगा। श्रोताओं, नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी अब रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA से 17 महिला कैडेटों के पहले बैच ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर स्नातक किया। अब तक लगभग 160 महिला कैडेट NDA में शामिल हो चुकी हैं। ये बदलाव दिखाता है कि महिलाओं के लिए अवसर अब पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता, कृषि, स्थानीय शासन और रक्षा, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, आज नारी शक्ति केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है। सरकार का जोर अब कल्याण से आगे बढ़कर महिलाओं को नेतृत्व, सम्मान और अवसर देने पर है। जब किसी महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता, इसका लाभ उसके परिवार, बच्चों और पूरे समुदाय तक पहुंचता है। यही वजह है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में नारी शक्ति को एक महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। चाहे महिला उद्यमी के रूप में हो, किसान के रूप में, कर्मचारी के रूप में, जन प्रतिनिधि के रूप में या देश की सुरक्षा में योगदान देने वाली अधिकारी के रूप में, महिलाओं की भूमिका लगातार व्यापक हो रही है। स्वस्थ महिला, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर महिला, यही मजबूत परिवार, मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र की पहचान है। नारी शक्ति की यह बढ़ती भागीदारी भारत को अधिक समावेशी, सक्षम और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हैं अलका सिंह। नमस्कार।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

6:20 है चुरी की घड़ी का समय और दोबारा मैं और आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम जायंट क्लासिक्स के साथ। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए फिर एक बार रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर और इस कार्यक्रम के शेष 10 मिनट बच चुके हैं हमारे पास। तो चलिए ये जो 10 मिनट है आखिरी के 10 मिनट, इसमें भी पुराने फिल्मी गीतों को मैं आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाऊं। और फिलहाल किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिएगा इस गीत को, चलती का नाम गाड़ी से।

अगले और आखिरी गीत की ओर आगे बढ़ें उससे पहले दोबारा आगामी कल के लिए यानी कि 18 अगस्त के लिए सतर्क वार्ता फिर एक बार साझा करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। 18 अगस्त को सुबह 8:30 से दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना दी जा रही है। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश 7 से 20 सेंटीमीटर और एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की प्रबल संभावना दी जा रही है। दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश 7 से 20 सेंटीमीटर होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की प्रबल संभावना है। दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की प्रबल संभावना दी जा रही है। तो इसी सतर्क वार्ता के साथ आज के इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त, लेकिन जाने से पहले लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज में हाथ की सफाई फिल्म से सुनते रहिए इस गीत को, और इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिएगा इजाजत आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रही हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा ठीक 7 बजेगा, और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 107 FM रेनबो, लेकर आऊंगी कार्यक्रम छायालोक। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 100.1 FM गोल्ड के साथ। सुन रहे थे कार्यक्रम चैन क्लासिक्स।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार निखिल, नमस्कार अनुभव, सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर.
0: थैंक यू निखिल. Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 300 points, Nifty settles below 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes, and global crude oil prices rise.
1: शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में लगभग 300 अंक की सुस्ती, जबकि निफ्टी 24,300 अंक के नीचे बंद हुआ. सेबी के प्रमुख ने कहा, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अभी जारी रहेगा. सेबी प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा और आवश्यक होने पर बदलाव भी लाएगा. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.

0: And listeners, we will be taking calls from you and Mr. Sharad Kohli will be answering them. But before that, do remember that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil.
1: श्रोताओं आपको बता दें घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.36% यानी 281 अंक गिरकर 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.32% यानी 78 अंक गिरकर 24,288 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज बढ़त का रुख देखा गया। मिड कैप सूचकांक में मामूली तेजी आई जबकि स्मॉल कैप में 0.4% का उछाल आया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 281 points or 0.36% to close at 77,728. The Nifty lost 78 points or 0.32% to settle at 24,288. However, the broader market at the National Stock Exchange managed to end in positive territory. The Mid-Cap 100 index eked out a marginal gain, while the Small-Cap 100 index increased 0.4%. Earlier, the markets opened on a weak footing amid geopolitical uncertainty, with both benchmark indices remaining under pressure after the opening bell. Though the indices spared some of their earlier losses during the afternoon trade, yet they continued to trade in negative territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों में इंफोसिस 2.7%, HCL टेक 2.5% और सनफार्मा 2.2% नीचे रहे। इसके विपरीत टाटा स्टील 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और रिलायंस 0.8% ऊपर चढ़े।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द BSE 15 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिक्लाइंड 1.7%, फोकस्ड IT ड्रॉप्ड 1.6% एंड टेलीकम्युनिकेशन फेल बाय 1.2%। इन कॉन्ट्रास्ट रियलिटी इंक्रीज्ड 1.4%, metal gained 1% and capital goods added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,353 companies declined, shares of 2,087 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित। अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: पॉली सर। नमस्कार सर।
3: नमस्कार अमित
2: सर। सैटरडे को नहीं आए थे आप सर?
3: हाँ, आज तो आपसे बातचीत हो रही है, बताइए।
2: सर, प्रश्न ये है, जैसे आप कहते हैं सर कि सेक्टर रोटेशन, ठीक है सर, जैसे आप हमेशा कहते हैं, तो सेक्टर रोटेशन में कौन सा सेक्टर अभी रोटेशन में है या उसका रोटेशन अब एंड हो चुका है, ये हम कैसे पता करें कि सर वो सेक्टर की अब रोटेशन है वो एंड हो चुकी है और हम इसमें बाइंग कर सकते हैं? दूसरी चीज सर, जो अभी सेबी ने एक 4 अगस्त से एक सेबी ने जो नया नियम लाया सर ऑप्शन का जो भी है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है सर कि 3:15 पे जैसे इक्विटी कैश मार्केट बंद हो जाती है? हेलो सर।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो निफ्टी अचानक से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद ओपन होती है, लाइक 366 की क्लोजिंग होती है 3:15 पे और सडनली वो ओपन हो जाता है फिर से 435 पे, तो उसके बाद 3:40 तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ना सर प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना या फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेड को कब लें एग्जिट करना, एकदम से 10 रुपए कॉल आ जाती है 3:15 पे और फिर उसके सडनली 5 मिनट बाद ही 100 रुपए पे ट्रेड होने लगती है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा और डर सा ज्यादा लगा रहता है। धन्यवाद सर।
3: जी हाँ अमित, आपके दोनों प्रश्न बहुत जायज़ हैं। रोटेशन का आपने पूछा, रोटेशन का पता चलता है जब उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई तो डिफेंस

0: स्टेबल हो जाते हैं जाके, तो उससे आइडिया लगता है कि अब ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है। और ये तो बहुत आसान है पता लगाना, आपके पास मान लीजिए मेरे पास 8 सेक्टर हैं, FMCG है, डिफेंस है, IT है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी का है, ऑटोमोबाइल है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स गिनूं, तो आप उन सेक्टर्स के, आपको मैं सलाह ये दूंगा, आपको आसान तरीका बताता हूं, आप सेक्टर्स की कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए और उसको आप अपने प्राइस ट्रैकर जो होता है, हर निवेशक का अनुभव और निखिल एक प्राइस ट्रैकर होता है, उस प्राइस ट्रैकर में आप लगा दें तो आपको वो देखेंगे कि उस सेक्टर के सारे शेयर जैसे ही कोई खबर आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो हिलने शुरू हो जाते हैं
1: जी।
0: तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि ऊपर, और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो पता लग जाता है अब इसके शेयर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा, आपने पूछा अभी खबर भी है आज इससे रिलेटेड कि सेबी के चीफ ने कहा है कि अभी ये जारी रहेगा और ये इस पे लोगों की सलाह ली जा रही है कि आगे क्या करना है। ये होता क्या है कि पहले आखिरी आधे घंटे में वेटेड एवरेज बेसिस पे प्राइस सेटल होती थी, अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको कहते हैं कैस, तो इसमें अब आखिरी वक्त पर ऑक्शन की जाती है, उस ऑक्शन के आधार पर क्लोजिंग प्राइसेस आती हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को और बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसमें परेशानी आ रही है, जैसे एग्जैक्टली जो आपने परेशानी बताई है ठीक यही परेशानी ज़्यादातर ऑपरेटर्स को आ रही है, इसको लेके काफ़ी, इनफैक्ट एक दिन तो ट्रेडर्स ने एक तरह से हड़ताल कर दी थी, उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, उनको परेशानी आ रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, एकदम से प्राइस ऊपर हो जाती है, लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है निफ्टी, एकदम नीचे चली जाती है, तो इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेटल होने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा हालांकि मेरे अंदाज से ज़्यादा समय लग रहा है, तो कुछ समय इंतजार करनी चाहिए। सेबी के चीफ ने आज स्टेटमेंट दी है और आपको आपको इसमें समाचार मिलता रहेगा
2: जी। एंड जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम जयपुर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल जितेंद्र, एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग about this closing auction session, the concerns that Amit has raised and which Arshada ji just addressed, the SEBI chairman, Securities and Exchange Board of India chairman Tuhin Kamta Pandey addressed those concerns today, and he has reiterated that the new closing auction session CAS introduced from August 3rd will continue. Speaking on the sidelines of the launch of cyber reporting platforms at the at the National Institute of Securities Markets, Mr. Pandey said the regulator would consider suggestions from the industry and make changes wherever necessary. The SEBI chief added that there are no concerns around tracking error and that several participants in the industry have welcomed the move. He added some participants are yet to update their own systems, which have been built on the historical system and the VWAP system. He further noted that SEBI will soon come up with a consultation paper on the securities lending and borrowing mechanism in its efforts to stabilize cash. So, Mr. Kohli, as I just read, Mr. Kant, the SEBI chairman is aware of the concerns, and of course the government is saying that they will definitely take that into consideration and make changes wherever necessary.
0: Absolutely. I think as you rightly read, you know, some of the traders, they still operate on the old system, you know, all the trading is done online. And to adopt this new system of CAS, you need to update your software, update the systems which you are using. So all the operators maybe are not prepared for that. I think, as I said, it'll take time, but there is still a lot of confusion, I must say. And sooner this is addressed, the better it would be for people.
3: जितेंद्र है जयपुर से, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए।
4: हाँ सर, जैसे IPO निकलता है तो मैं उसको देखा, तो जैसे एक OFS था, ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में शेयर है, फेस इशू ब्रैकेट में शेयर है, फिर नेट ऑफर टू दी पब्लिक, ठीक है, तो ये तीन तरह का था, कोई कोई फ्रेश इशू भी आता है, तो रिटेलर के लिए क्या उसको देखना चाहिए कि मतलब वो अपने किसको क्या मार्क करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि सभी के स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ पॉइंट रहते हैं और रिस्क भी बहुत पॉइंट रहता है, तो हम लोग उसको कैसे थोड़ा ये करें, टच करें।
0: आपका जितेंद्र, दूसरा सवाल तो बहुत क्लियर नहीं है, पर पहला सवाल आपने IPO, OFS और नेट ऑफर टू पब्लिक कहा है। IPO तो बिल्कुल फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, नाम ही इनिशियल है उसका, तो इनिशियल मतलब कोई भी कंपनी जब पहली दफ़े कैपिटल मार्केट को टैप करती है, जब कैपिटल मार्केट में जाती है, उसको IPO कहते हैं। ऑफर फॉर सेल उनका होता है जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो एडिशनल इशू यानी कि सेकेंड इशू लाना चाहती है, या अपने जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है उसको वो लोग पब्लिक को देते हैं। इसी से आपका तीसरा वाला भी दिक्कत है, नेट ऑफर टू पब्लिक, उसका टोटल लिखा होता है कि टोटल जो प्रमोटर्स के पास कैपिटल है उसमें से कितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और आपका दूसरा वाला सवाल बहुत क्लियर नहीं था, आपने क्या पूछा, शायद पिछले सवाल से रिलेटेड
3: रिस्क मैनेजमेंट की शायद बात कर रहे थे,
0: रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप कैश से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज का रिस्क आप बात कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, मैं कौन से रिस्क की बात करूं समझ नहीं आ रही।
2: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। It's

0: coming in from Delhi. Dinesh has joined us online. Dinesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. दिनेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. आपसे जी हाँ जी बताएं. जी
1: हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो हम भी बहुत आ रहा है.
2: दिनेश जी, ऐसा लग रहा है आपका नेटवर्क जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है.
0: वी विल आस्क यू दिनेश जी, आप अगली बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली. रत्नाकर हैज जॉइंड अस.
3: हेलो
4: जी, रत्नाकर जी स्वागत है, सवाल पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल है कि जो शेयर मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन होता है
2: जी,
3: तो उसका मतलब क्या है प्री ओपनिंग सेशन, और उसमें हम मार्केट में परचेस करने के लिए स्ट्रिप डाल सकते हैं क्या, और उसका असर जब भी मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9:15 को तो उसमें क्या होता है, ये सवाल है. और दूसरा सवाल है कि ये आने वाले समय में कौन से सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है. थैंक यू.
2: चलिए रत्नाकर जी, दूसरा सवाल तो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, पर इनका पहला सवाल प्री ओपनिंग सेशन का है. तो जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हो रहा है, इसी प्रकार से 9:15 बजे मार्केट प्री ओपनिंग के लिए खुल जाती है. इसमें आप अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं. उस ट्रेड को एक्सिक्यूट तो 9:30 बजे ही होते हैं जब मार्केट पूरी खुलती है, पर उसमें उसको हम मार्केट मेकिंग सेशन भी कहते हैं एक तरह से. तो उसमें आप अपने ट्रेड्स चूज कर सकते हैं, आप ट्रेड्स अपने खड़े कर सकते हैं और 9:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं. तो जैसे कुछ कुछ आप ऐसा समझिए कि जैसे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है अनुभव और निखिल, उसी प्रकार से प्री ओपनिंग सेशन होता है. आप रत्नाकर जी इसमें ऐसे करेगा, कभी आप उसको ट्राई करेगा, आपने अगर कैश में डील करना है तो आप उसको उठा के देखिएगा, तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि कैसे मार्केट मेकिंग होती है उस समय. पर प्री ओपनिंग सेशन जनरली मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छोटे ट्रेडर्स कम उसमें हाथ डालते हैं. दूसरा आपका है सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, हालांकि आप ये पहले कई दफ़े पूछ चुके हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा. FMCG है जो मुझे लग रहा है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. डिफेंस अभी भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते बहुत अच्छा लग रहा है. जो मैंने अपने 4-5 सेक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं, और मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है. ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ जो EVs पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 3-4 पे आप खास नज़र बना के देखते हैं. IT वगैरह थोड़ा सा अभी डाइसी है, ऑटोमोबाइल नॉन EV सेक्शन में डाइसी है, ऑयल कंपनीज भी डाइसी है, स्टील मेटल सेक्टर भी मुझे अब थोड़ा सा अब तेजी पकड़ता यहाँ से नजर आ रहा है, खासकर कॉपर हो गया
4: जी.
2: और जो कंपनीज माइनिंग में है उनका मुझे प्रॉस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है जी.
4: इस बीच दिनेश दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर हैं. दिनेश जी सवाल पूछिए जल्दी से.
1: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
2: जी बताइए.
1: ये जो डॉलर रुपी का रेट है, रुपी को हम लोग डीवैल्यू करते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए
2: जी.
1: लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी लूज कर रही है स्टैंडर्ड्स, एंड वो भी डीवैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री. हमारा जो 5 ट्रिलियन टन का लक्ष्य था वो भी हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है अगर रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है. तो क्या हम लोग को रुपी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए धीरे धीरे करके, एंड ये जो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है, जैसे शेयर्स भी डिमांड सप्लाई पे होते हैं डिसाइड, लेकिन शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर. तो व्हाट इज द वे आउट कि हम लोग रुपी को डॉलर के विज स्ट्रेंथन कर सके.
2: देखिए दिनेश जी, पहली बात तो डॉलर रुपी को हम डीवैल्यू कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा डेलिबरेट हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको करा जाए. ये एक स्वाभाविक तौर से हो रहा है, और मुख्यतः इसका कारण पीछे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ज़्यादा रहना है. आज भी $90 के आसपास है. हमें ज़्यादा जब डॉलर खरीदने पड़ते हैं तो उससे हमारा रुपया कमज़ोर होता है. अब बहुत कोशिश की जा रही है इसकी, बल्कि RBI ने अभी FCNR B डिपॉजिट्स निकाले हैं, उसमें $52.3 बिलियन आया है. अब तो FIIs और FPIs भी अभी 16,600 करोड़ के अगस्त में खरीदारी कर चुके हैं, पिछले महीने भी 20,000 करोड़ से करी. तो जैसे जैसे दिनेश जी डॉलर हमारे यहाँ आते हैं उससे रुपया संभलता है. जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है, ऐसे जब हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो रुपये पर प्रेशर पड़ता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ RBI अपनी तरफ से एक बैलेंस बना के रखता है, और RBI डॉलर रुपी स्वॉप भी करता रहता है बीच बीच में. तो ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा, और पूरी RBI इसमें भरसक प्रयास कर रहा है कि इसको यहीं पर संभाला जाए, पर बहुत हद तक ये स्वाभाविक होता है.
4: और खबरों में आगे बढ़ते हैं. देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में ये 5% थी। इसके विपरीत शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में मामूली बढ़कर 6.7% हो गई, जो जून में 6.6% थी। महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.4%, जबकि पुरुषों में ये घटकर 5% रह गई है। शरद, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो इसी खबर से रिलेटेड है, जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं उनसे क्या स्थिति हमें नजर आ रही है, और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले सप्ताह गिरावट का रुख देखा गया और आज कारोबार का पहला दिन था इस सप्ताह का, उसमें भी हम गिरावट का रुख देख रहे हैं।
2: देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करें, मैं समझता हूँ अच्छी खबर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरता है। महिलाओं में थोड़ा सा गिरना, उसके और कारण भी होते हैं। कुछ महिला ऑप्ट आउट कर जाती हैं मार्केट से, शादी हो जाती है या कुछ और ऐसा, उनके निजी कारण होते हैं। पर हमारी जीडीपी की अच्छी रफ्तार और अभी आईआईपी के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे, मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बूस्ट कर रहा है। स्टार्टअप्स नए लग रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जबकि लोगों को डर था कि शायद एआई की वजह से नौकरियां नहीं लगेंगी। और दूसरा, आपने मार्केट्स का पूछा पिछले हफ्ते, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक वैश्विक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्रूड ऑयल $90 पहुंचना, उधर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.6 से ऊपर चल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ने एक अनिश्चितता, तो भारत के जो आंतरिक फैक्टर्स हैं वो इस समय अनुकूल हैं, पर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं जिसके मार्केट जिसको क्यू लेके खुलता है वो प्रतिकूल बने हुए हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो 24,000 निफ्टी के बीच में घूमे जा रहा है, कई दिन से घूमे जा रहा है, कोशिश करता है फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है।
0: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू जस्ट मेंशनड व्हिच वाज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। सो इफ यू लुक एट द Q1 रिजल्ट्स नाउ बाय सम you know some estimates the Q1 results have come out better than expected, and in spite of that we see the markets are not reacting to those better than expected results.
2: I think Anubhav, market the international factors are overriding,
0: right,
2: and they are sort of shadowing the domestic factors. As I said, domestically we are doing very well. There is a slight concern on monsoon, they say for the next 15 days are very crucial for kharif crops, but otherwise I think the international factors are dominating at this point of time.
0: Right. Let's move forward.
4: अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विचार विमर्श से प्राप्त हुए निष्कर्षों से समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है, डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। शरद, वित्त मंत्री का यह बयान देना कि भारत की जो स्थिति है, बैंकों की जो स्थिति है, काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही, खासतौर पर दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं देखने को हमें मिल रही है, ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस बना करके चलने की।
2: जी हाँ, बैंकिंग तो निखिल रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज बैंकिंग में जिस प्रकार से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले चंद सालों में, खासकर सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट्स की बहुत सफाई हुई है, अब एनपीएस का लोड कम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, जहां जहां रिकवरी है वहां रिकवरी हो रही है, पर ओवरऑल बैलेंस शीट का क्लीन अप किया गया है। और निजी बैंक तो वैसे ही बहुत ख्याल रखते हैं, निजी बैंक के तो प्रॉफिट बॉटम लाइन बहुत अच्छे आई हैं, और अब मुझे लगता है सरकारी बैंकों में फिर से लोगों का विश्वास बन रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास वापस आ रहे हैं, और उनकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार दिखाई दिया है। और आपको मुझे लगता है बैंक निफ्टी को भी अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो वो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है।
0: Let's move on to the next story. But before we do that, Nikhil, let me repeat the numbers on which our callers can call us with their queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011. Mr. Sharad Kohli is in studio with us to answer your queries. Nikhil.
4: जी हाँ, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। एशियाई बाजारों में जापान के निक्के 225 में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की सकल घरेलू उत्पाद इस साल अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1.1% की सालाना दर से बढ़ी है। वहीं यूरोपीय बाजारों की हम

0: करें तो जर्मनी का डेक्स और लंदन का फुटसी 100 दोनों ही समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इस बीच दिल्ली से प्रीतम फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रीतम, आपका सवाल क्या है?
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, सवाल पूछिए।
1: हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें एक तो स्कीम बताते हैं कि ये क्या है, तो पता चला है कि ये यूनिट होती है, इसमें इंश्योरेंस भी और आपका बचत भी होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कोहली जी से, आप इस बात को मानेंगे कि जो अभी जो यूक्रेन, रशिया, ईरान और ये बाकी और देशों में जो तबाही हुई है, बिल्डिंग डैमेज हुई है, तो आने वाले समय में इन बिजनेस में, इस बिजनेस में बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए काफी लोगों की तादाद में काफी रोजगार मिलने के चांसेस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए?
2: चलिए, प्रीतम जी ने अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ है, अपने आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, आवाज़ अपनी सुनने में रेडियो सेट ऑन हो। देखिए यूलिप, मैं प्रीतम जी बोलूँगा कि यूलिप बहुत बहुत अच्छी स्कीम मैं नहीं मानता हूँ। बैंक वगैरह जो उसको बेचते हैं वो ठीक है, उनका काम है बेचना, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस मिक्स करने से क्या होता है कि आप बेस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते और बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले जाते। तो मेरा मानना है कि जिसको इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस आप लीजिए इंश्योरेंस के लिए, रिस्क कवरेज के लिए, और इन्वेस्टमेंट आप करिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा यूलिप का निजी तौर पर बहुत फ़ैन नहीं हूँ, और सैद्धांतिक रूप से भी मुझे लगता है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रीतम जी को तो यूक्रेन रशिया में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है उसमें, और मुझे लग रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी $300 बिलियन का मुझे याद है क्लेम ईरान ने बात की थी कि हमें चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल उनके लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। अब भारतीय कंपनी कितना ले पाती है नहीं ले पाती है तो प्रश्न चिन्ह है, पर प्रीतम जी पहले लड़ाई रुकने तो दें, अभी तो मामला पहले एक बार थमेगा तब कहीं दोबारा बनाने की बात आएगी। तो अभी तो हम यही अटकलें लगा रहे हैं कि कब रुकेगा, रुकेगा भी नहीं रुकेगा। आज तो मैं कहीं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लड़ाई चलती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई जीत हार नहीं रहा है, ये देखने को मिल रहा है मुझे अजीब वगरीब। पहले लड़ाइयां होती थी उसमें कोई जीत हार जाता था, इसमें तो कोई ना हारता है ना कोई जीतता है।
3: और जैसा आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तबाही रुकनी चाहिए, बाद में रिकंस्ट्रक्शन। और इसी से लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। ईरान टुडे सेड इट हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट विद Oman on a plan to manage the transit of ships through the Strait of Hormuz, and the two sides are now working to finalize details for a joint statement. Talking to reporters in Tehran, Iranian Foreign Affairs spokesperson Ismail Baghai said an understanding has been reached regarding the map of the transit route. Fully reopening the waterway to commercial shipping has been a key demand of the United States, but it remains unclear whether the deal will meet with Washington's criteria. Let's move to the next story. The government has approved 31 more applications under the Electronics Components Manufacturing Scheme, or ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacture of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers and capacitors and coils. And the next call is coming in from Gurugram. Mukesh has joined us online. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question.
4: Yeah, thank you, ma'am. Good evening. So my question is that my previous employer, it is related to EPF, has stopped giving me interest on my deposit amount because I attained the age of 58, but I am still continuing job at the age of 59. Kindly help me, is it the right thing or do I am supposed to get the interest from the previous employer? I tried transferring, but because of administrative reason, I could not transfer.
2: Well, Mukesh, I would suggest in such a case you should contact the Provident Fund authorities, because at the end of the day, you know, all the recognized Provident Funds are administered by the PFRDA, you know, Provident Fund Regulatory Development Authority. So you can reach out to them. They will ensure transfer also and the stoppage of your interest, because you've retired from there. So obviously they don't want to bear the interest liability. But I'm sure once you transfer and you continue to work, there is no such law that after 58, if you work, your PF is not going to give you interest. So just reach out to the nearest, and it's all online these days. It's going to be quite easy, Mukesh. Right.
3: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading

0: 4.4% up at $88.90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.50 per barrel when reports last came in. And a look at the gold and silver prices, Nikhil.
1: भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1.2% बढ़कर 1,54,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 2,35,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। शरद, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है इससे नीचे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं?
2: क्रूड ऑयल में तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने यहां तक कह दिया जब तक राष्ट्रपति ट्रंप बने रहेंगे युद्ध चलता रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे मिड टर्म तक उम्मीद रखिए, उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि आप हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहिए मिड टर्म तक। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ भी संभावना है, जैसे बोलते हैं अभी कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। $90 है और खतरनाक होगा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगर ये $100 और उसके बाद जाता है हमारा इम्पोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट, रुपए पर प्रेशर, वो सारी दिक्कतें फिर वापस आती क्या पूरी तरह से तो अभी गई नहीं है, पर और ज्यादा एग्रवेट होती हमें यहाँ से दिखाई दे सकती हैं, और चाइना है, कोरिया है, इनके लिए दिक्कत आ सकती है।
1: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया, थैंक यू।
0: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,300। सेबी चीफ बैक्स कंटिन्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, सेज रेगुलेटर विल रिव्यू इंडस्ट्री फीडबैक and make necessary changes. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष।

0: और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges, and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishno, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applicants are related to the manufacturing of projects, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents, including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Bajayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal, and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the national treasurer of the party. B.L. Santosh has been appointed as organizational national general secretary. Mr. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as National General Secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas, including Dr. Himang Joshi as the Yuva Morcha President, Roop Kumari Chaudhary as Mahila Morcha President and Bansilal Gurjar as Kisan Morcha President. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has congratulated the newly appointed national office bearers of the party and those who have been given various responsibilities. Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of the National Testing Agency and other senior officials in New Delhi. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all examination processes and submit a report on the corrective action taken. The Qatar India remittance service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. The initiative combines the extensive reach of postal networks with India's digital public infrastructure to provide an efficient and convenient channel for cross-border remittances. India's ace shuttler PV Sindhu has advanced to the second round of the women's singles event at the BWF World Championships in New Delhi. The former world champion dominated Ireland's Sophia Noble, winning 21-7, 21-11. Meanwhile, in the women's double, India's Treza Jolly and Gayatri Gopichand have also progressed to the second round. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at the stumps on day 3 of the first test in Galle. And that is the end of this news bulletin.

0: লক্ষ পরিবার তথ্য জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে 49 লক্ষ পরিবারের তথ্য সফলভাবে নথিভুক্ত হয়েছে, যা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সব থেকে বেশি।
1: Our census phase 1 has started on August 1st, everyone of you probably know. And we started with self-enumeration. And after 15 days, on August 15th, we have completed the self-enumeration. I also want to thank the people of West Bengal responding, because the self-enumeration has been launched for the first digital enumeration. Because every time we only have one option, where the enumerator goes and then takes the census. So people have their own self-enumeration where they can give their own data without any other botherations. So they have responded.
0: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ প্রাথমিকভাবে উত্তর উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিমে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একটি প্রতিবেদন,
2: গভীর নিম্নচাপটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তবে সকালের দিকে তা কলকাতার কাছে অবস্থান করায় দফায় দফায় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ সারাদিনই বৃষ্টি হয় এবং বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। আজ সকাল 8:30 থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত আলিপুরে 44 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় জল জমে গেলে পুরসভা তৎপরতার সঙ্গে নিকাশির কাজ শুরু করে। তবে আগামীকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান ডক্টর হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন।
3: গভীর নিম্নচাপটি আগামী 24 ঘন্টায় ঝাড়খণ্ডের দিকে ক্রমশ সরে যাবে। আগামীকালকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এই জেলাগুলোতে এক দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে, বাকি জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা নেই। কলকাতা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী 24 ঘন্টায় মাঝে মধ্যেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে, এক দু পশলা তীব্র বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে আজ এবং কাল। 24 ঘন্টা পরে আবহাওয়ার উন্নতি ধীরে ধীরে হবে।
2: কাশ্মীর নাহার, আকাশবাণী সংবাদ, কলকাতা।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को भी कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी

0: ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। तेलंगाना में आज मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया। हैदराबाद में मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि मतदाताओं से 78.30% गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में शामिल करीब 92 लाख आवेदकों को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वे 15 अक्टूबर 2026 तक आवश्यक जानकारी जमा कर सकें या अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिलेगी। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे में दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने महिला डबल्स तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Component Manufacturing Scheme, ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacturing of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. Speaking on the occasion, Mr. Ashwini Vaishnav said that with this 31 approvals, a total of 106 applications of companies have got approvals under the scheme. Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency NTA, and other senior officials in New Delhi. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. BJP National President Nitin Nabin today announced a new team of National Office Bearers of the party. Mr. Nabin has appointed 13 National Vice Presidents, including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal, and Rekha Verma.

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक,

0: स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
1: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए

0: गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कोलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
4: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव

0: प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन SPV की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। PV सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ¡Ore Posade!
1: Nazan, nazan, nazan, nazan, nazan, nazan.